नमाज पढ़ने के बाद जब पलट के देखते हैं कि वो 330 में से एक बंदा भी नहीं है। हम लोग इमाम रज़ा अलैहि सलाम के बारे में उन्वान कहते हैं, या गरीब अल गुराबा। तारीख में उस मौके पर उस मगरिब की नमाज जो कूफा में मुस्लिम ने पढ़ी है, उसके बाद अगर इस ज़मीन पर कोई वाकयान गरीब अल गुराबा था जो यका तन्हा था, वो मुस्लिम बिन अकील थे। शहर से भी वाकिफ नहीं थे, मेहमान के हैसियत से जहां भी जाना था कोई लेके जाता था, रास्तों से वाकिफ नहीं थे। निकलते हैं, एक महल्ले की तरफ चले जाते हैं, महल्ले किंदा, वहां देखते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, सभी लोग खौफ की वजह से अपने घरों में हैं। एक मकान का दरवाज़ा था, उसके पहलू में जाके बैठ जाते हैं। एक ज़ईफ़ा जो मालिक थी उस मकान की, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कोई अजनबी शख्स बैठा हुआ है। एक दो बार वो आई, मुस्लिम बिन अकील ने पानी मांगा, उसने पानी ला के दिया। फिर दोबारा आके देखती है, कहती है, ए बंदे खुदा, तुमने पानी मांगा था, पानी दे दिया, अब हजाओ यहाँ से। एक जुमला कहती है, इज़हब इला अहलिक फ़इन्न मजलिसुका मजलिसु रईब। ए बंदे खुदा, अपने घर जाओ, अपनी फैमिली के पास जाओ, इसलिए कि तुम्हारा हमारे घर के दरवाजे पर बैठना, हम तनहा औरत हैं, ये मुनासिब नहीं है। मुस्लिम बिन अकील ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की, लेकिन जब तीन बार इस खातून ने इस जुमले को दोहराया है और वे कहती हैं, इन्नी ला उहिल्लु लकल जलूस अला बाबी, फिर कहती हैं, हम आपको इजाज़त नहीं देते हैं, आपके लिए हलाल नहीं है कि आप मेरे दरवाजे पर बैठें। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील ने कहा, कज़बनी अल-क़ौम वग़र्रूनी, कौम ने मुझे धोखा दिया है, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, हम हुसैन के सफ़ीर हैं। तो हाँ, ये खातून जो हैं, तो हाँ ये मुहिब अहले बैत थी, जब मुस्लिम का नाम सुना तो अपने घर पना देती हैं। एक कमरा जो इस्तेमाल नहीं होता था उसमें उनको जगह देती हैं और खाना और पानी का इंतज़ाम करती हैं। अज़दारान हुसैन इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया था कि जो भी मुस्लिम की ख़बर लेके आएगा उसे इनाम मिलेगा। तोहा का बेटा बहुत देर के बाद आया और माँ से कहता है कि हमने बहुत तलाश की लेकिन हमें कुछ इनाम अभी तक मिला नहीं है। लेकिन देखता रहा कि माँ उस कमरे में बार बार जा रही है जो इतना यूज़ नहीं होता था। इसरार करने पर माँ ने ये वादा लेने के बाद उससे कहा है कि मुस्लिम बिन अकील को हमने पनाह दी है। वो मलून जाता है इब्न ज़ियाद के पास, खबरगिरी करता है वहाँ और फिर बताता है, अलसबा 70 सिपाही घोड़ों के साथ आते हैं। जैसे ही ये घोड़ों के चलने की आवाज़ गलियों के करीब आती है, मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि ये मेरे लिए आए हैं। मुस्लिम मेहमान ज़रूर थे लेकिन उन्हें ख्याल था अपने मेज़बान का भी, और तोहा से कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि तेरे घर में कोई नुकसान हो और हमला यहाँ हो, लिहाजा दरवाज़े के बाहर आते हैं तलवार लिए हुए। 70 सिपाही आए थे, जो भी सामने आता था जनाब मुस्लिम बिन अकील शुजात और दिलावरी से मुकाबला करते थे। बहुत सों को फिनार किया, बहुत सों को ज़ख्मी किया, यहाँ तक के अब्दुल्ला बिन अशअस मलून जो है वो इब्न ज़ियाद के पास पैगाम भेजता है कि हमें री एनफोर्समेंट चाहिए। दोबारा 100 और आए, उस जिस पर इब्न ज़ियाद फिर पैगाम भेजता है अब्दुल्ला बिन अशअस को कि हमने सिर्फ़ एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए भेजा है, ये तुम बार बार सिपाही क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा कि तुझे अंदाज़ा नहीं है, ये बनु हाशिम का शेर है, ये कोई कूफा का बकाल नहीं है जिसे गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। अदारा ने हुसैन फिर मुख्तलिफ घरों के छत पर ये चले जाते हैं, सिपाही और पत्थर से वार करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि जनाब

0: कोई बात करो मुस्लिम।
1: मुझे मार दोगे या अमान दोगे?
0: क्यों पूछ रहे हो?
1: मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदाने जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी।
2: हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान, असीरी की हालत में भी रजस खानी करते हैं ये लोग। इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं।
1: हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तमास करते हैं।
2: तो फिर खुदा से इल्तमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे।
1: खुदा से तलब मग़फ़िरत करता हूँ।
2: मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम।
1: मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो।
2: बिस्मिल्लाह।
1: ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह।
3: मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो।
2: ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो, ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो।
3: अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा।
2: कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुना भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह।
3: वसीयत पर अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या, फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं।
2: अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफारा अदा कर देना।

0: वसीयत सुनाओ मुस्लिम।
1: मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्न अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखलूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना।

0: जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है?
1: वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर, राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी, कोई और ख्वाहिश है?
2: मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो।
1: बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरण नजस हो जाएगी।
3: जी अमीर,
4: मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदाए खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है।
2: जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सुएजन की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है।
1: इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए जन की वजह से।
2: खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजात और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तेहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं।

0: क्यों पानी नहीं पिया?
1: मेरे मुंह का खून माने हो गया।
0: देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो चाहता है प्यासे मरो।
1: ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरार है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या?
0: अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है?
1: गुमान नहीं है, यकीन है।
0: सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सरी और मोहक्कम कौल है, फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं।
1: मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है, इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक साले मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है।
0: खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा।
1: हाँ, तुम वही हो कि वो बिदतें दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नाम मर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना, तुमसे कुछ भी बई नहीं।
0: कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो?
2: मैं हूँ अमीर बुकैर इब्ने हुमरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है।
0: बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो।
2: जी अमीर। चलो

0: इस प्रोग्राम में अपने अजीज भाइयों इस्लामी जम्हूरिया ईरान के पुलिस और इंतज़ामी अमले की खिदमत में हैं, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। हम वाकई बहुत खुश हैं कि आप सब इस महफिल में मौजूद हैं। हमें आप पर फ़ख्र है। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, आप पब्लिक की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। जो भी इश्क और खलूस से लोगों की खिदमत करता है, यकीनन अल्लाह के नज़दीक माजूर है। ज़ोरदार तालियों की ये दरख्वास्त है। और अब पेशे खिदमत है नौजवान कारी और हाफिज़े कुल कुरान, एक कुरानी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे का इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाह जनाब मसूद, ज़रा सलाम दुआ कर लीजिए।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ असातज़ा कराम, हाज़रीन ग्रामी, पुलिस के मुअज़्ज़ज़ अफसरान और दुनिया भर में हमें देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में।
0: बहुत जिंदा और सलामत रहे, जिंदा और सलामत।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो आइए सीधे चलते हैं तिलावत की तरफ। क़ारी मुमताज़ जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे की खूबसूरत तिलावत है। यह भी बताता चलूँ कि जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे ने लॉ की तालीम हासिल की है और अब जज के मनसब पर फायज है। इनके वालिद मोहतरम और चचा दोनों मुल्क के मारूफ कुर्रा में से।
2: चचा भी?
0: जी, अल्लाह सबको सलामत रखे।
3: यानी जज हैं या?
0: जी जज है।
2: ये तस्वीर इसीलिए लगी।
3: अगर कोई मुश्किल हो तो यहाँ हल कराई जा सकती है।
0: नहीं, पार्टीबाजी नहीं चलती।
3: ओके।
0: बिस्मिल्लाह जनाब।

वो जो पैमाने के नीचे बच जाता है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जानते हैं आप हजरत, इमाम जमाना की सिफात में से सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली सिफत अदल है, और उस अदल का सबसे नुमाया पहलू इक्तिसादी अदल है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले यही इंसाफ, यही माआशी अदल कायम करेंगे। बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज।

आओ ये जमीन ले लो, महंगे इलाके में ले लो, हमारे साथ रहो, हमारे लिए काम करो। तुम अच्छी बातें कर लेते हो, तबलीग कर लेते हो, बातचीत का सलीका आता है। लो ये महंगी जमीन ले लो और हमारे साथ आ जाओ। मगर शुएब ने जवाब दिया, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, जिस चीज से मैं तुम्हें रोक रहा हूं वही खुद करूं, हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्ततअतु, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इस्लाह की कोशिश करूंगा, ना ये कि पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, मगर मैं अपना फरीजा जरूर निभाऊंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, तौफीक देने वाला भी अल्लाह है।

जहां भी हम हैं। इक्तसादी करप्शन ऐसी चीज है कि अगर ये कल्चर बन जाए, आदत हो जाए, अगर ये सिस्टमैटिक हो जाए, अगर बैंक रिबा लेने लगे और ये फिर ये सिस्टम में सरायत